तुझे सर फेंदम सियो मांगो ही पे हाथ मुलो फल नला जोन आंजीरा जनाब के मुझे भी मैं ठीक से मुझे प्रो मानुष तेरनो शावो सिंह भी मैं दे दिखले शुंदम भी मैं हो ना जहाबू हो सार सिका दो मुझे मांगावे ना शा हाथ एल भी जाए अमेन्या सोन्या लेस्की करेस्तान्या त्रोबुई ओप्रेटे उरावेल वज माय पुरी पेन उरावेल हाय उजे कना के थाने सोला कारी ना को ओप्रल वेजेटीला को ओल्टारी कादे जना के थाने देलो रशा ए जंप पितना चाज उजे विको ते के थाने देल को दो मानुष को नो प्रेसी पितना चाज हाय पालो को दावेन तेले फेल केरे फेल साजन अन दोबाव को तब मिन या खुचिले ने रोम उजे रोमानेस के थाने देल विको ते सी प्रो रोम कोन के थाने देल सर मोया सा मारेसा त्रुबुई के थाने ते देल कादे दिक्लेम हजे पाला को दो शाह जालो बाव